0: 你在那里要学能跟去西班牙解决说，然后呢去西班牙连接，先从可能去云南干么控制，你们就能做个几十年给了。
1: 那是了。来，先不看啥？来，西班牙能看先不看啥？
2: 跟珍珠来的，跟珍珠来的，他那块看上，孤单人输赢了。
1: 那是看上国际了，西班牙肯定赢了。
2: 我就是把我同情的解决了。
1: 那是了，跟什么你给提的菜单吃这西边，他们那里的南边，俺们成都西边送些的国际来的索赔原因呢？
2: 他们那里当南边，俺们成都西边路线，好像年纪点把车通到日产那块里边去左转吧，跟改转那张跟点转那年纪左那块跟两山头那张跟几转嘛啦，这段小把就能跟到这些垃圾左那块跟把上了。说唐提醒我的来说用了去年年的热心托成多当古树设当清张成都朝华他的集中顶住用啊年年破年里人去安来他见推送托不用啊跟这段拉唐跟这段拉年纪做就闹唐跟到这些拉圾写不就就闹哎实在那个里人去托个里地让用哎这些民族用的时候就应该了
1: 你写过你来了
2: 前年龙庭山多出出几通到拉塘，啥时阿家地基啦？说个姐姐送人得去啦，说个出村几送人到我啦，说个你东几把上车的拉塘到我车啦，说几做那位龙庭山多生意用了去年，推大多你们车的塘，甚至他的很多地基皮村超过用位，这些民居养来养出去个了。
1: 那是了。
2: 年代的是年阳朋友弄了修不毛进来，十八几不早人民都怪个啦。年代的修一个啦。
1: 那是那是，估计那个你不能把他家那修一。
2: 那我信了，跟跟着了呢，跟跟着了，我说了他家那让那修一个啦。
1: 那是了，
0: 那是了。
2: 跟跟着了，水电加工。
0: 那是水电加工。
2: 跟跟着了，水电加工。
1: 那是修哦。那
2: 我信了。
1: 那。
0: 你空干啥？
3: 干啥？给给的啦，打给点的啦，打给了上不到这些啦。不是干啥嘛？家有人给了那不是？
0: 那干啥？我那去先找人给了呀。既然给钱，我就去那人
3: 了。那再给了，点给点嘛就给，我就是想看我的点给人家有了。
0: 那行了，我那去吃点水呗。俺们城路上路线的小品能就有那了。
3: 那再给了，俺们城路上的。ये ना चाहे गुनांगे कई जिक्दे गुरुलाता नवालाता दोजे संधुलाता ते चाहे गुनांगे थोई जिक्दे संधुलाते ताकि चेंज जी इस फ़ोन नंबर तो लो बुझे ये ला थामो चिर जंगता लाता सीजी थामो छोलाता सांग मालो लो बुझे ये किसी थोई ने ये थोपो थामो यों दा तुझे यों ला बुझे ये ना गुंगन से दां चाल लाम तो यों जो मा�去南阳路就经济用的，你就是这样的啦。
0: 那行了，
3: 那这个啦，那别人给了那么多，天生是的，贡献蛮大的，给的蛮大。但是个体都赚钱，但是农民忙些，我让俺们平时生意的，从不去当家的啦。
0: 那行了，从不去那人呢？
3: 那这个啦，他去。

0: 那从我们从那去了前那里演出，那天去写吧，唐古的就是听出来写吧的呀，去写了呢。我那去天去先找俺唐古的苏瑞都给去写难度。
1: 那是了，那意思没看上。
2: 今我听着见到都是了，主人见见着了，见那么多单位人些了，俺家都心都急，俺老是装着你们听着，装着呢，可把就遇见了那么松。
1: 那。你现在说你跟三宝他们个跟东西，你们听出来这段话了？
0: 嗯，
1: 你们听出来？你现在吃这区别？新看破处错不能当南北陈新区别，送些的索票也难。
2: 老当多见主人见见多了，他怎么见多了？先把新看见到这些了，可能弄不出什么这些解答，这样怎么送的嘞？你可能不出过来，可是先别听呢，陈新个路线的。推给人家啦，
1: 那是土气，
0: 土气难说的。
2: 老等到今天突然间结婚了，但怎么见到了？怎么激动了？见到这些了？见杨继松了？见不上了？我这弄的我这脸色用了，他们编辑部都了路线批决，见那么多来麻烦个老弟拿来，我说实在吃完那么多难民钱，看上去没用的，这些民都学那些，看那么多。新疆那个婆婆妈妈，姑孙家来的，那是出来的那样的，公路家那个修的，这些民都修不起来。
1: 那是那是，
0: 多钱呢？
2: 啊，当老，当多俺这不要民嘛，那不是，当个男子都是个的是那，同事的王国当的做了修脚的，那也可可是的，王国提的提当个呢，提他阿妈提当个呢，新疆那就。那点的点着的，俺小个要往个天地帮我们打，人我们管他嘛，路都都，俺那搞到搞到的，小个的是给你跟个过去种的叔叔培育那里，米培育那里，过去长得也不那罗西，长得像那绿特别用过吧，行啦。
1: 认识你们村上
2: 个。俺们都是带着那罗那小个人，俺那俺这米嘛，那不就点的年多个干了呢？अनि दबा जि जि कुदम जिनि नदो के कले पुति जि जि जि जि कने मल जे जे कुना जु मिचि ओ तसो मेम मिचि दो म गु तसो सु सुंगेम न गोरे गंगे कुच कुच नदे नारो ना शु गु केला आ केला न म तो सुम ने लुशे ति न्यो ने पुजे अनि ले ते ले तो ता कुसुल थोजा ना आ
1: लेस लेस तो जि जि जि जा
2: म तो कुले खसु शेल路线的土路路啊，那生意在连城里都用不消。
1: 啊，那是。俺
2: 见见到了，就没见到嘛了，见到都是那舒服。
0: 那是，老徐店吃过。
2: 那是。
0: 喂，康生。
3: 喂，康生了。
0: 老康生，现在可凶呢了。
3: 你们家不是个月了，恁几年的？
0: 那些你们也不拉些吧？南姐，我那最初的区别那些，唐古新看不出错别的南北，陈新时代的作品能走呢？
3: 宋先陈新时代的宋先的业务是啥？就当做跟编织了的跟改正了，你的满家有人修就人了。
0: 那些满家有人。
3: 啥子？那古代告诉我。
0: 能。
3: 现在俺这农地占着来说也是，阿家地地了的，修修不清道了，家家送人这些了，相当给送人到家了，土地为谁了，田子里住了，扛马给吉利了，年里就来穷吃的了，一个在农地里边得穷了，家里不愿意了。
0: 那先了。
3: 人家松露就不能看见了。
0: 松露看着也难了。
3: 该有住的生意。
0: 该有住的抢先这边了。
3: 哪里？
0: 那些，他们去哪了？
3: 那些。